0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ टी20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सी 130 जे हर्क्युलिस इति अद्य काठमाण्डुनगरं प्रति प्रस्थितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य अस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 37.1 शततमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ताविभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ आन् एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धौ भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। भारत ऋतु विभागेन आगामी दिनद्वयोः ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अद्य अरुणाचल प्रदेशस्य असमराज्यस्य मेघालयस्य छत्तीसगढ़स्य गांगेय पश्चिम बंगालस्य च केषुचित् स्थानेषु अपि प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अद्य बिहार पूर्वी मध्यप्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश झारखंड नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम उत्तराखंड विदर्भ इत्येतेषु स्थानेषु अपि अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे थाईलैंड देशस्य विरुद्धं स्वस्य 20-प्रति-20 एशिया कप इत्यभियानस्य आरंभं करिष्यति इति वार्ताः।
1: एते पले जाए कार्यक्रम रिलेकर सुनैल आकाशवाणी संबलपुर एवं परपरि सुनिले आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु संस्कृतरे संवाद। श्रोताबंधु आपण कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी भवानी पाटन केन्द्र एथर आसत जाणने आम केन्द्र आज प्रचार होगा कार्यक्रम सूचना आज सका 7:25 प्रचार करू कुनि कुनि पिला सरगफल कार्यक्रम संथकवि भीम भईं कृति उपर आधारित स्तुति चिंतामणि शुणे सका 8:30 सका 9 फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी भवानी पाटना पूर्वाह्न 10:10 प्रचार करू स्थानीय खबर और मधुर गीतर कार्यक्रम खोला झरका। पूर्वाह्न 11 प्रचार करू माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासी उद्बोधन मन की बात आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र पर शुणे दिन 11:30 यार ओडिया भाषातर आकाशवाणी कटक केन्द्र देशात्मबोधक गीत प्रचार करू दिन 12 सुगम संगीत शुणे दिन 12:30 चासर कथा दिन 1:10 ओडिया आलबम गीत दिन 1:20 दिन 2:45 शुणे हिंदी कथचित्र गीत अपराह 5 विशेष कार्यक्रम उदय भारत चिठी पाइचु अपराह 5:15 अपराह 5:30 युवाणी शुणे मनोरंजनी आदिवासी गीतक्रम प्रचार करू कंध संप्रदायर गीत संध्या 6:30 राति 7:25 जिला हलचल क्रम शुणे जाजपुर जिला संपर्क आकाशवाणी कटक केन्द्र चाषबास कार्यक्रम राति 7:30 राति 8 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासी उद्बोधन मन की पात्र ओडिया भाषातर रिले प्रचार करू आकाशवाणी कटक केन्द्र राति 8:30 स्पोर्ट्स स्कैन राति 9:15 स्पॉटलाइट राति 9:30 अभिलेख उपर आधारित कार्यक्रम अनुगुंज एवं राति 10 शुणे रविवासी संगीत सभा ए समस्त कार्यक्रम रिले प्रचार करू आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र आम केन्द्र आज प्रचार होगा कार्यक्रम रूपरेख आकाशवाणी भवानी पटना परवर्ती प्रसारण प्रथमे आंचलिक संवाद आमरी स्वास्थ्य परिपरि शुणे ओडियारे संवाद रिले प्रचार करछु आकाशवाणी कटक केन्द्र शुणिपारे अल्पक्षण मध्यरे।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों

0: पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: एवरी नेशन हैज ए मिशन।
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: सो डाइवर्सिटी हैज टू बी सेलिब्रेटेड।
1: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
4: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुवाकोट और

0: भादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटेकोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधा कृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भोटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

0: अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
1: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: One, two, three, four.
1: सुनो, चाय नियो। अरे, चाय नियो माँ।
2: गलो।
1: कौन है मिति गानी पकाऊ चाहे?
2: अरे खबर कागजरो चारी पृष्ठा उल्टे लेनी स्थानीय खबर कोटे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इत्ते कहीं की? आमो रेडियो टा ऑन कलनी? मीडियम वेवरे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आमो आकाशवाणी भवानी पटना ट्यून करो प्रत्येक दिन सकाळ 10टा बजे 10 मिनिट रु 11टा बजे 10 मिनिट जाए स्थानीय खबर आ मनपसंदर गीत कोनी कार्यक्रम खोला।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ताशकंद से हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे और उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहाँ दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, इसके अलावा मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। गुजरात में इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास रखता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दो दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वो अलापुज़ा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पथनमथिट्टा जिले में अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री को लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने बैंक मिस्र की अमीरात स्थित शाखाओं की विशेष और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। यह कदम अमरीकी वित्त मंत्रालय की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें बैंक की शाखाओं पर ईरान के कथित गुप्त बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े लेनदेन की प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑनलाइन के 88वें संस्करण में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ब्रिक्स के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ଶ୍ରୋତବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଉ କିଛି କଥା ରଖିବା, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିନେବା ଏହି ସୂଚନା।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को

0: मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
1: The best of entertainment, information, education, अब आपकी एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू
2: ये तुम्हारे ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी
2: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
1: और ये
3: मेरी बुढ़िया के नाम
4: पर दादी हाँ आपके नाम
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
2: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए
8: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहाँ आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं है मदद बस एक कॉल दूर है
9: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
10: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता

0: रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर। नमस्ते
0: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
1: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर, मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
1: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
0: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह

0: वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री। सर
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं। सर, सुझाव दो प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा। तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके। तो वो हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी है सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं

ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्य पथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती है, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया।

काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला, उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता, इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी, बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर ग्लेडियो

लस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालू पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी,

प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदु पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोड़ाई कनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं।

0: लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है, यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी किया जाएगा। मन

0: रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: आकाशवाणी को
2: रिले करी प्रचार कलु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी। मन की बात शीर्षक देशवासियों दे उद्बोधन आकाशवाणी दिल्ली और पर शुणिले यार ओडिया भाषातर आकाशवाणी कटक केन्द्र आकाशवाणी भवानीपाटणा प्रचार करुछ केतोटी देशात्मबोधक गीत समबेत कंठरे शुणतु कार्यक्रम प्रथम गीत रचना स्नेहलता महांती।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आपणक चाहा
1: ईएमआई भडा केमिति मैनेज करबि
0: गोटे उपाय अछि भलो पैसा मिलिबो
1: केमिति
0: निज बैंक डिटेल्स दे दियो किछि लोक पैसा पठेइबे सेमानक कहिबा अकाउंट रे ट्रांसफर कर दियो कमिशन मिलिबो
1: एते सहज
0: कोन सहज एहा मनी मिल अटे बेआइनी पैसा अन्य अकाउंट द्वारा स्थानांतरित करि थांति एहा अपराध जेल हेइ पारे
1: ना भाई ना निज बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखंतु काहा को भी व्यवहार करबा को दियंतु नहीं आरबीआई कहे
2: सचेतन हुवंतु सतर्क रहंतु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। उन्होंने कहा कि देश में उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने उनसे इस प्रयास में विभिन्न भाषाओं में कंटेंट तैयार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा के देवरीगढ़ क्षेत्र के

0: धोड़रो कुसुम के मैथिली भुए ने ये दिखा दिया है कि जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना भी संभव है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज और तमिलनाडु में कोडाई कनाल के चंद्रशेखरन के उल्लेख किया, जो एवोकाडो की खेती के जरिए अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान योग महासंघ के योग कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने अपने आवास पर श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। भारत से अब तक 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बालेश्वर में लगातार वर्षा के कारण सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश तेज हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said that the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign is gaining momentum rapidly across the country. Sharing his thoughts in the Mann Ki Baat program on Akashwani this morning, Mr. Modi asked people to come up with a powerful slogan for a drug-free India and young musicians to create songs that convey the message of a drug-free life.
1: Nasha Mukt Bharat ke liye kya aap koi powerful slogan bana sakte hain? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: The Prime Minister said lakhs of women are gaining new strength through the PM Swanidhi Yojana. He said this aspect of women empowerment is not discussed as much as it should be. Mr. Modi said women account for approximately 46% of the beneficiaries of the PM Swanidhi Yojana. Mr. Modi said today the flight of country's daughters' dreams is soaring from the earth to the outer space. The Prime Minister said the initiative is named Mission Shakti Sat, and through it, 12,000 girl students from 108 countries are getting the opportunity to learn satellite technology in the field of innovation.
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है, और आपको यह जानकर

0: ଆକାଶବାଣୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ, ସୂଚନା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର ପରସ୍ପର।
1: दर्शक वृंद खबरदार, जदि ब्रेकिंग न्यूज हेबारु बंचिवार अछि तबे पैसा पठेबा समय रे नाम आउ धनराशि सर्वदा पुनी थरे जांच करंतु।
2: आरबीआई कहे कहा को भी पेमेंट कला बेले टिकिए ध्यान रो सहित।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की

0: टेंथ एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
0: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
0: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
0: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था? आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
0: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुआ में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
0: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
0: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए

0: खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है, लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं।

0: संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
2: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीह बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIR News Hindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीती अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उप कप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम की अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना 1 सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में

0: उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्यूरेटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एते बेले जाय आपण माने कार्यक्रम सुणुथिले रिले करी प्रचार करूथिलु आकाशवाणी दिल्ली रु आकाशवाणी कटक समय स्टूडियो घड़ी रे 2:30 आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनि परिबे किछि समय व्यवधान रे।
2: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
3: गांव सहर जाए सबु स्थान रे
2: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

तेरे नाम कथाचित्रर गीतटी द्वैतकंठे गाई उदित नारायण और अलका याग्नेय गीत रचना करिछंती समीर संगीत परिचालना हिमेश रेशमिया।

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନ 3 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा रहे हैं। ताशकंद में आज राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान अपने शुरुआती संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश उन्नत साझेदारी के ढांचे के भीतर ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौता भी किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट समझौतों को भी औपचारिक रूप दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं को दिशा देने के लिए विदेश मंत्री स्तर पर एक समन्वय परिषद का गठन करेंगे।
2: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
1: श्री मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। श्री मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
3: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि देशभर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। मिशन शक्ति सेट और इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंगों को लेकर आया है। श्री मोदी ने मुंबई के कृष्णा शेषाद्री से बात की जिन्होंने एक अद्भुत वेबसाइट www.bharatrajya.com शुरू की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में

0: भाग लेंगे। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। पीठासीन सभापति के रूप में सरदार हुकुम सिंह ने सदन के संचालन में कई अच्छी परंपराएं स्थापित की। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल की उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश तेज हो रही है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में बहुत तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज काठमांडू पहुंचा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi was conferred with Uzbekistan's Supreme State Award, the Order of Oley Darajali Dastlik, by President Shavkat Mirziyoyev today in Tashkent. Prime Minister Modi dedicated the award to the enduring bond between India and Uzbekistan. In a social media post, Mr. Modi said that he is honoured to receive the award. Earlier in his opening remarks during delegation-level talks with President Shavkat Mirziyoyev, Mr. Modi said that both countries are elevating ties to the level of a comprehensive strategic partnership. He also expressed happiness over the coincidence of the 15th anniversary of strategic partnership and 35th anniversary of the Independence Day of Uzbekistan.
2: Sukhat sanyog se hum is varsh apni strategic partnership ki 15th anniversary bhi mana rahe hain. Mujhe khushi hai is vishesh avsar par hum apne sambandhon ko comprehensive strategic partnership ka darja dene ja rahe hain. Hum iske antargat thos laksh nirdharit karte hue aage badhenge.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat campaign is gaining momentum rapidly across the country. Sharing his thoughts in the Man Ki Baat program on Akashwani this morning, Mr. Modi expressed happiness that the campaign with a goal for drug-free youth and a drug-free India is not merely a formality, as many people, especially the youth, are joining it in large numbers.
2: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्ज्वल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
1: The Prime Minister said drug addiction does not just engulf a single individual, but the entire family and society bear the consequences. He commended those who raise awareness against drugs and step forward to help individuals struggling with addiction. The Prime Minister said lakhs of women are gaining new strength through the PM Swanidhi Yojana. He said this aspect of women empowerment is not discussed as much as it should be. Mr. Modi said women account for approximately 46% of the beneficiaries of the PM Swanidhi Yojana. The Prime Minister said cleanliness has a remarkable quality. He said when the resolve to keep a place clean becomes the people's own commitment, it completely changes the identity of that place. Mr. Modi spoke to Krishna Shashadri from Mumbai, who has created a unique website, www.bharatrajya.com. By selecting any year in the website, people can easily find out which ruler ruled over which part of India at that time. He said this initiative by Mr. Krishna will help not only the history students, but also the people to learn about the past in an engaging way. The Department of Consumer Affairs has notified the Legal Metrology Indian Standard Time Rules 2026. The rules provide for Indian Standard Time, IST,

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. आइए सुनते हैं धरती फिल्म से ड्यूएट. आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर.
1: एतेबेळ जाए कार्यक्रम रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी भवानीपाटणा. समय वर्तमान अपराह्न 3:25. एथर शुणन्तु आजिर तृतीय अधिवेशनरे प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्करे सूचना. अपराह्न 5:00 शुणिबे विशेष कार्यक्रम उदय भारत. चिठी पाइछु कार्यक्रम शुणिबे अपराह्न 5:15. अपराह्न 5:30 शुणिबे युववाणी कार्यक्रम. आदिवासी गीतक्रम शुणिबे कंध गीत संध्या 6:30. परिवेषण करिबे निरंजन कुटरुका और साथी. राति 7:25 शुणिबे जिला हालचाल क्रम जाजपुर जिला संपर्क आकाशवाणी कटक केन्द्र. चासबास कार्यक्रम प्रचार करिबु राति 7:30. राति 8:00 प्रचार करिबु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासी पाई उद्बोधन मन की बात ओडिया भाषांतर आकाशवाणी कटक केन्द्र. राति 8:30 स्पोर्ट्स स्कैन. राति 9:15 स्पॉटलाइट. राति 9:30 शुणिबे अभिलेख उपरे आधारित कार्यक्रम अनुगुंज और राति 10:00 शुणिबे रविवासरीय संगीत सभा. यह समस्त कार्यक्रम रिले करी प्रचार करिबु आकाशवाणी दिल्लीरु. शुणिले कार्यक्रम सूचना आकाशवाणी भवानीपाटणा. एठि शेष करुछु आजिर द्वितीय अधिवेशन. भिन्न भिन्न कार्यक्रम सहित पुणि थरे उपस्थित होबु अपराह्न 5:00. सेतबेळ जाय विदाय नौछु.

0: आसीगला सेलेदी
1: हां
0: एबे नुवा झुमुका
1: ना प्रथमे संचय
0: प्रथमे झुमुका
1: सुनो प्रति मासरे किछि बंचाओ किछि निवेश करो आउ किछि इमर्जेंसी पाई भी बंचै कि रखो जा द्वारा रहिबो टेंशन फ्री
0: किंतु झुमुका रो कोन
1: जाउ छु ना गोड़ी देबी इंजेक्शन
2: आरबीआई कहे
1: आर्थिक बुद्धिमता जहारी से समृद्ध नारी
3: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी मात्र गुटी क्लिक रे
4: अरे वाह
5: अजना लिंक्स उपरे क्लिक करंतु नाही आरबीआई कहे
6: सचेतन हुंतु सतर्क रुहंतु

नमस्कार शुभ संध्या एवं स्वागत जनाउछि आपण मनंकु आजिर मनोरंजनी कार्यक्रम को उपस्थापन रे मु अछि आपणंक मित अनिंदिता रथ। स्वर संगीत सूचना ओ मनोरंजनीर एही सुंदर समन्वय रे आपण मनंकु स्वागत। श्रोता बंधु, जीवनर किछि मुहूर्त संगीत रे रंगीन हुए, किछि मुहूर्त नुआ कथा जानिबार उत्साह रे एवं किछि मुहूर्त अन्य मानंक पई किछि करिबार प्रेरणा रे। आजर कार्यक्रमरे मध्ये रहिछि सेभळी किछि सूचना, किछि आलोचना ओ निश्चित भावरे मनोरंजनर छोट छोट मुहूर्त। तेबे आसन्तु आरंभ करिबा आजर मनोरंजनी कार्यक्रमकु। 25 अगस्त रु जातीय चक्षुदान पक्ष आरंभ हेछि, जहा 8 सेप्टेम्बर पर्यंत चलिबो। आमे प्राय कहू आखि हेउछि दुनिया को देखिबार छरका। आखि माध्यमरे आमे निज प्रियजनक मुह देखू, प्रकृतिर सौंदर्य देखू, सकाळर सूर्य किरण, वर्षार धारा, आकाशर रंग एवं जीवनर अनेक सुंदर मुहूर्त को अनुभव करूँ। किंतु कर्णिया संबंधी कौनसी समस्या किंबा क्षति जोगु जो मैंने दृष्टि हर से समान दुनिया अंधकारमय हो पारे। एठी आमर एक छोट निष्पत्ति मृत्यु पर चक्षुदान एक महत् पदक्षेप अन्य जनक जीवन दृष्टि आलोक आणवे सहायक हो पारे। तेणु आज आम यही विषय भय किंबा द्विधार सहित नुहे, बर सचेतना और संवेदनशीलतार सहित कथा हेबा। कारण बेले बेले गोटे आलोचना गोटे भूल धारणा को दूर करिपारे। सठिक तथ्य जणे व्यक्ति को एक महत् निष्पत्ति नेबा को प्रेरणा दे पारे। आज निया एक छोट निष्पत्ति हुए तो आसंता काली अन्य जनक जीवन में आलोक आनीपारे। तेबे जातीय चक्षुदान पक्ष जहाँ 25 अगस्त रु आसंता मास 8 तारीख पर्यंत पालन कराउछि सही विषय आलोचना करिबा। एही पक्ष पालनर मुख्य उद्देश्य हेउछि चक्षुदान विषय रे सचेतनता सृष्टि करिबा एवं एही महत् दान किपरि अन्यमानंक दृष्टि फेराई आनिबारे सहायक होइपारे से विषय रे लोकमानंक जणाइबा। एबे जेतेबेले आमे चक्षुदान कथा शुणु आम मनरे अनेक प्रश्न एवं भ्रांत धारणा आसीपारे, तेणु आसंतु सेथिरु किछि को स्पष्ट करिबा। प्रथम कथा हेउछि चक्षुदान जणे व्यक्तिंक मृत्यु परे ही करा जाए। जणे व्यक्ति जीवित थिबा समय रे चक्षुदान पई निजर इच्छा प्रकाश करि परंती, किंतु दान प्रक्रिया मृत्यु परे ही हुए। आउ एक जरूरी कथा हेउछि चक्षुदान माने संपूर्ण आखि को अन्य जणंक आखि रे प्रतिरोपण करा जिबा नहि। कर्निया अर्थात आखिर सामना भागर स्वच्छ परदा प्रतिरोपण पई व्यवहार करा जाय पारे। आउ एक साधारण भ्रांत धारणा हेउछि चक्षुदान कले मृत व्यक्ति मुह विकृत होइजिबो किंबा शेषकृत्यरे बाधा सृष्टि होबो। एहा सत्य नुहि। चक्षु संग्रह प्रक्रिया जत्नर सहित करा जाए एवं एहा मृत व्यक्ति चेहरा को विकृत करे नाही किंबा पारंपरिक शेषकृत्यरे बाधा सृष्टि करे नाही। आउ एक धारणा रहिछि जे केवल युवक किंबा संपूर्ण सुस्थ व्यक्ति माने ही चक्षुदान करि परिबे, किंतु वास्तवरे मृत्यु परे चक्षु बैंक पक्षर दानर योग्यता जांच करा जाए। वयस किंबा किछि स्वास्थ्यगत समस्या थिबा मात्रे चक्षुदान असंभव बोली कहा जाय पारे नहीं। किंतु इठारे आउ एक खूब जरूरी कथा मन रखिबा दरकार जे मृत्युर पर समय खूब मूल्यवान। सेथिपाई जदि केही चक्षुदान करिबाकु इच्छा प्रकाश करिथान्ते तेबे तांक परिवार लोकमाने एही इच्छा विषय रे जानिथिबा अत्यंत जरूरी। मृत्यु परे यथाशीघ्र चक्षु बैंक किंबा अधिक

0: ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେକ୍ ରିପୋର୍ଚର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ସର ଫିରୋଜି। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली।

0: दोस्तों ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद ताशकंद से किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देशभर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के 5वें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता है। वहीं 28 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेइचिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership, marking a significant step towards in ties between the two countries. Both sides also signed several memoranda of understanding, MOUs, aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors. These include

0: 1, 2, 3, 4.
1: सुनो, चाय नियो। अरे चाय नियो मो।
2: देलो।
1: कौन है मिति गणी पकाऊ चाहे?
2: अरे खबर कागजर चारी पृष्ठा उल्टे लेनी, स्थानीय खबर गोटे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इतने कहीं कि आम रेडियो टा ऑन कलनी? मीडियम वेव्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्स जोगे एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्स जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आमो आकाशवाणी भवानीपटना ट्यून करो प्रत्येक दिन सकाळ 10

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: हेलो
3: हेलो
2: किए
4: आपणक सह किछि मीठा मीठा कथा किछि अनुभव किछि अनुभूति रा कथा
5: आम सह कथा हुंतु फोन माध्यम रे प्रत्येक गुरुवार दिन 11:30 पर्यंत
4: आम फोन नंबर हैला
6: 0667029562329568।
5: मने रखंतु 0667029562329568 एवं एहार प्रसारण सुनंतु प्रत्येक रविवार दिन 9:00-10:00 पर्यंत।
2: हेलो
3: हेलो
2: किए
4: हेलो आकाशवाणी भवानी पाटना
0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: ख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना पीएम स्वनिधि योजनया महिला सशक्तिकरणं प्रतिपादितं उक्तञ्च 35 लक्षाधिकाः महिलाः अनया लाभान्विताः प्रधानमन्त्रिणा मिशन शक्ति सेट इत्याख्यः उपक्रमः प्रतिपादितः 68 शतदेशानां 12,000 छात्राः उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञास्यन्ति नूतनोन्मेषं च साधयिष्यन्ति मादकमुक्त भारताभियानाय घोषवाक्यानि विषयसामग्रीं च निर्मातुं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना युवानः अभ्यर्थिताः अभियानं देशे द्रुतगत्या प्रवर्धते इत्यपि अमुना प्रोदीरितम् नेपालदेशे भीष्मजलाप्लावेन मृतानां संख्या 68+700 सम्प्राप्ता प्रायः 25% जनाः अद्यापि विलुप्ताः भारतेन 11 टन्मितां मानवीय सहायता सामग्रीमादाय 4th विमानं नेपालाय प्रेषितम् अपि च यूएई देशस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे 20-20 एशिया चषक स्पर्धायाम् अद्य सायं भारत थाईलैंड दले परस्परं सम्मुखी भविष्यतः अथ वार्ताः विशदीकृत्य भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्चशिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि देशद्वयेन 30+2000 वर्षं यावत् 5 अर्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितं यथि साम्प्रतिक व्यापारस्य 5 गुणितं वर्तते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्मानमपि अलभत इदं सम्मानं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम् ताशकन्दनगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोयेवः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिय दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान् प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्मानः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढसम्बन्धेभ्यः समर्पितः श्रीमोदी अवोचत् यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवम् अनुभवति अपि च देशद्वयं व्यापकरणनीतिकसंरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायकलक्ष्यनिर्धारणार्थमग्रे समेधयिष्यन्ते राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेफ इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरवार्तायां श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयं निजसम्बन्धान् व्यापकरणनीतिकसहभागितास्तरं यावत् नयतः अनन्तरं सहयोगस्य समस्तस्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणा समन्वयसमितेः घटना विधास्यते प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यत् विकसितभारताय मादकमुक्तयुवाभियानं कृत्स्नेहि देशे द्रुतगत्या संवर्धते अद्य प्रातः आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे स्वविचारान् उपस्थापयन् श्रीमोदी सन्तोषं प्राकटयत् यत् व्यसनमुक्तयुवकानां मादकमुक्तभारतस्य च लक्ष्ययुक्तम् इदम् अभियानं केवलम् औपचारिकं नास्ति अपि तु बहवः जनाः विशेषतः युवानः महत्या संख्यया अस्मिन् संयुज्यन्ते
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है नशा मुक्त युवा ड्रग फ्री इंडिया बहुत सारे लोग विशेषकर हमारे युवा बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ उनकी हैप्पीनेस और उज्ज्वल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है
0: प्रधानमन्त्री न्यवेदयत् यत् मादकद्रव्यव्यसनं केवलम् एकं जनं न ग्रसते अपि तु समग्रः परिवारः समाजश्च अस्य दुष्परिणामान् भुङ्क्ते सः तेषां सर्वेषां भूरिशः प्रशंसां कृतवान् ये मादकविरोधि जागरूकतां प्रसारयन्ति अथ च मादकद्रव्येन पीडितानां सहायतायै अग्रे आगच्छन्ति
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाए जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले
0: प्रधानमंत्री अवदत यत पीएम स्वनिधि

0: संक्षिप्तवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् स्वच्छतायां बहवो गुणाः भवन्ति। सः अवदत् यत् यदा कस्यचित् स्थानस्य स्वच्छता संकल्पः जनसामान्यस्य स्वकीय संकल्पः भवति तदा सः तस्य स्थानस्य समग्र स्वरूपमेव परिवर्तयति।
1: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: श्री मोदी अवदत् यत् अद्य देशस्य कन्यानां स्वप्नाः भूमेः आरभ्य अन्तरिक्षं यावत् विस्तीर्णाः। सः असूचयत् यत् भारतं समग्र विश्वस्मात् सहस्रशः कन्याः एकत्र आनयति याः एतादृशान् स्वप्नान् पश्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अस्य उपक्रमस्य नाम मिशन शक्ति सेट् इत्यस्ति, येन 18 द्वादशसहस्रं छात्राः नूतनोन्मेषक्षेत्रे उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञातुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री मुम्बईनगरस्थेन कृष्णशेषाद्रि इत्यमुना सह सम्भाषणम् अकरोत्, येन www.bharatrajya.com इति एकं विशिष्टं वेबफलकं निर्मितम्। अनेन वेबफलकेन कस्यापि वर्षस्य चयनेन जनाः सहजतया ज्ञातुं शक्नुवन्ति यत् तस्मिन् काले भारतस्य कस्मिन् भागे कस्य शासकस्य शासनमासीत्। श्रीमोदी अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे वन्दे मातरम् इति गीतस्य 150वीं जयन्ती वर्तते, अतः इदं वर्षम् इतोप्यधिकं विशिष्टं महत्त्वमावहति।
1: तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशन्स और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे।
0: मध्य नेपाले आकस्मिक जल प्रलयेन मृतानां संख्या समेध्य 868-700 संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसी संप्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पञ्चमे दिने साहाय्योद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। महिलानां एशिया चषक 20-20 क्रिकेट चषक श्रृंखलायाम् अद्य भारतीय महिलादलं थाईलैंड दलेन सह क्रीडिष्यति। इयं स्पर्धा दुबई नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण रात्रौ 8:30 स्पर्धा आरप्स्यते। दलनायिकायाः हरमनप्रीत कौर इत्यस्याः नेतृत्वे भारतं प्रतियोगितायां स्वस्य अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी भवानीपाटणा श्रोताबन्धु शुणन्तु आदिवासी गीतक्रमरे कन्ध गीत परिवेशन करिछन्ति निरञ्जन कुट्रुका ओ साथी।
3: कंध भाई भूनी मानंकर बाहाघर समय गीत परिवेशन करछंती रायगढ़ जिला अंतर्गत मंडापाई ग्रामर निरंजन कुटुका एवं साथी।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: ପିଲାଟା ପାଣିଆ ଝାଡ଼ା ହେଇ ଏତେ ସରିହେଲାଣି ତାକୁ ଟିକେ ORS ଦେଇନ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶିଶୁକୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ତା ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଏ ଏବଂ ଦେହ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଏ ପିଲାଟା ଶରୀର ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯାଏ ଆଖି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ଚମଡ଼ା ଧୁକୁଡ଼ା ହେଇଯାଏ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁକୁ ORS ମିଶା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ଏଥିସହିତ ଜିଙ୍କ ବଟିକା ମଧ୍ୟ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ
3: हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा पेंशन DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
4: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल ज्यादा बचत ज्यादा काम।

हर घर तिरंगा अभियान भावना के अत्का सशक्त करिछि। ए बछर बन्दे मातरम 150 तम वार्षिकी पालन होतुबानु हर घर तिरंगा अभियान खास थिला। चलती बछर 8 कोटी नु एतका तिरंगा सेल्फी अपलोड हेतबार श्री मोदी सूचना देछ। आंतर्जातिक स्तर नु पालित हेतबार सूर्यपथ तिरंगा पदक्षेप बाब देबिल श्री मोदी आलोचना करिछ। आयबा पार्वण ऋतु थी जन्माष्टमी विश्वकर्मा पूजा गणेश पूजा पड़ुथिबानु प्रधानमंत्री देशवासी को शुभेच्छा जनईछन। पार्वण ऋतु थी भोकाल फॉर लोकल के अपनावार के से देशवासी को आह्वान देइछन। कोर्ट कर निर्देश थिले भिल महिला मानकु भरण पोषण नाइ देउथिबार पुरुष सरकारी कर्मचारी कर विरोध थी कड़ा कार्यानुष्ठान नेबार के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश देइछन। महिला के छुआ पिलांकर लागि भरण पोषण नाइ देउथिबार राज्य सरकारी कर्मचारी कर दरमानु टंका काटिकरी देबार के श्री माझी निर्देश देइछन। मुख्यमंत्री कहिछन सरकारी कर्मचारी हेकरी अदालत रो अवमानना करबार पत्नी आर छुआ मानकर लागि अविचार बिल्कुल ग्रहणीय नुहे। आयबादिनी ए बाबद मामला के सरकार कर समन्वित आर स्वयंचालित व्यवस्था ती जुड़ीकरी आहुरी उन्नत करबार के मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारी मानकु परामर्श देइछन। राज्य चासी पंजीकरण समया के आउ 7 दिन बढ़ा जाइछे। ए बाबदे जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइछन। पंजीकरण समय एवं काल शेष होथुबार बेले इटा आउ 7 दिन बढ़ीचे। नेटवर्क समस्या लगी बहुत चासी पंजीकरण करबार के असुविधार सम्मुखीन होउथिले। एछन तक 17 लाख नु एतका चासी पंजीकरण कर सारिछन। सारा देशे नीट पीजी 2026 परीक्षा सफलतार सहित आयोजित होइछे। 339 शहर 1111 परीक्षा केन्द्र नु 265,000 नु एतका छात्र छात्री परीक्षा देइछन। राजस्थान रो जयपुर ठाने गोटे परीक्षा केन्द्र नु वैषयिक त्रुटि देखा देइथिला। इनर परीक्षार्थी मानकर लागि आयबा मासर 5 तारीख फेर घाय परीक्षा करा जिवा बुलकरि जना पडिछे। आपण माने खबर सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र नु। राज्य समवाय क्षेत्र संप्रसारण लक्ष्य नेकरि आयबा मंगलवार दिन मेगा सदस्यता अभियान संबंध रो शुभारंभ हबा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अभियान शुभारंभ करबे। इतार सहित मुख्यमंत्री 20 दुग्ध संग्रह केन्द्र 50 कृषि सेवा केन्द्र 46 खाउटी केन्द्र आर 200 जनसेवा केन्द्र भी उद्घाटन करबे। गाँ इलाकार सब परिवार नु कम से कम जन को समवाय सदस्य करवार लक्ष्य रखा जाइछे। राज्यर चाषी मानकु आर्थिक आर सामाजिक स्तर थी सशक्त करवार लक्ष्य नेकरि सदस्यता अभियान संबंध मूल करा जिबा। डिजिटल जरिया सदस्यता पंजीकरण के सहज आर स्वच्छ करवार लगे नुआ मोबाइल एप्लीकेशन रो शुभारंभ हेबा। ई अवसर रे समवाय क्षेत्र थी बहुत प्रकल्पर शुभारंभ आर भित्ति प्रस्तर स्थापना करा जिबा। ओडिशा समवाय इतिहास थी पहला थर लगे पेक्स आर लैंप्स चासी सदस्य मानकु सरकार लाभांश देबे। पहला केपे 180 पेक्स आर लैंप्स रो पाखापाखि 300,000 नु एतका हिताधिकारी 14 कोटी टंका लाभांश पाएबे। राज्य सरकार भिल अंशीदार भावे 4,22,00,000 टंका पाएबे। राज्यर सबु जिल्लानो उन्नत भित्तिभूमि थिबार 100 मॉडल मंडी स्थापित हेबा। पहला खेपे कैबिनेट थी अनुमोदित हेथिबार 38 मॉडल मंडी भितरु मंगलवार दिन कटक खोर्धार पुरीनो मोर 4 मॉडल मंडीर भित्ति प्रस्तर स्थापना करा जिबा। मुख्य शासन सचिव अनु गर्गक अध्यक्षता भुवनेश्वर लोकसेवा भवन ओडिशा पुष्टि मिशन रणनीति बैठक हो जाइछि। पुष्टिहीनता दूर करबार डिजिटल निरीक्षण और समृद्ध अंगनवाड़ी योजना थी अधा तैयार कोठा निर्माण काम शेष करबार उपरे दूर दिया। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजनार मिशन मोड हिसाब से इताके 18 जिलार 23,088 अंगनवाड़ी केन्द्र न लागू करा जिबा। इति संबलपुर सुंदरगढ़ नुआपड़ा झारसुगुड़ा कलाहांडी देवगढ़ जिला भिल सामिल अछन। 9 रणनीति स्तंभ उपरे फोकस रहबा। 2026-27 लागि 360,68,00,000 टंका व्यवराद रखा जाइछे। फिट इंडिया मुभमेंट अंश हिसाब से सारा देशे संडे जन साइकिल अभियान गोटे जन आंदोलन थी परिणत होती। भुवनेश्वर नु क्रीडार युवसेवा विभाग तरफ संडे जन साइकिल रैली हो जाए। प्रतिकूल पाग हेले भिल प्रतिजोगी माने बहुत संख्या थी साइकिल रैली थी जोग देते। क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कार्यक्रम के उद्घाटन करवार सहित प्रतिजोगी संगे साइकिल चलते। संबलपुर सहर नु गोटे साइकिल रैली आयोजित हो जाए। स्वास्थ्य सचेतनता सक्रिय जीवनशैली और क्रीड़ा मनोभाव बार्ता देवार लगे ये कार्यक्रम थी पाखापाखि 500 नु एतका साइकिल आरोही भाग नहीं। महानगर निगम कमिशनर रेहान खेत्री रैली रो शुभारंभ करते। बौधन होइतिबार साइकिल रैली के विधायक सरोज कुमार प्रधान और जिलापाल विभूतिभूषण नायक शुभारंभ करते। ये अवसर में भिन्न भिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिता भिल आयोजन कर सुवर्णपुर जिला आयोजित साइकिल रैली के जिलापाल नुपराज साहू पत्का देखिकी शुभारंभ करते। साइकिल रैली रामेश्वर स्टेडियम बाहरी सहर बुली भिन्न भिन्न विद्यालय और महाविद्यालय छात्र छात्री सहित भिन्न भिन्न संगठन स्वेच्छासेवी मैंने रैली भाग नहीं। संबलपुर गंगाधर।

0: श्रृंखला नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण रे युवक मानंको भूमिका उपरे मत व्यक्त करथिले।
1: माननीय प्रधानमंत्री सबु युव प्रतिभा वर्चुअल मोड आसी खेलो इंडिया उपरे संवाद देले। खेलो इंडिया माने प्रति पंचायत रे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हबो, प्रति पंचायत रे स्टेडियम हबो एवं सेतिरे तांकर जो अंतर्निहित प्रतिभा आछि से टैलेंट को प्रतिहत करंतु।
0: चलित मास रे होइथिबा बन्या रे जाजपुर जिल्ला रे व्यापक क्षयक्षति होइछि। दशरथपुर, जाजपुर, कोरेई, बड़चणा, बिंझारपुर, रसलपुर, धर्मशाला ओ बरी ब्लॉक प्रभावित होइछि। बैतरणी, बुढ़ा, काणी, ब्राह्मणी ओ खरस्रोता नदीर जलस्तर वृद्धि पाइबा जोगु परिस्थिति गंभीर होइछि। बन्यारे 112,000 अनेसत जन प्रभावित होइथिबा बेले 71,665 जन जलबंदी अवस्थारे रहिछन्ति। 41,360 जनको उद्धार कराजाई 87 आश्रयस्थली रे रखा जाइछि। सेहिपरि 87 मागणा रोषेई केन्द्र माध्यमरे रंधा खाद्य परिवेषण करा जाउछि। दशरथपुर ओ बिंझारपुर ब्लकर 2 स्थानरे नदीबंध भांगि जाइथिबारु घाई सृष्टि होइछि। 10 मेडिकल टीम एहि कार्यरे नियोजित अछन्ति। प्राय 68 रास्ता, पोल ओ कलभर्ट क्षतिग्रस्त होइछि। 13,478 जन विद्युत उपभोक्ता एथेरे प्रभावित होइछन्ति। जिल्लापाल अंबर कुमार कर कहिछन्ति प्रभावित लोकंकु रिलीफ, खाद्य, पानीय जल और चिकित्सा सेवा जगाई देबा सह क्षतिग्रस्त भित्तिभूमि रो पुनरुद्धार कार्य त्वरान्वित करा जाउछि।
2: आम जहाँ है तृतीय थर पर जोटा था जी आम रिलीफ कोर्ट पकड़े अच्छे लोक यथसाध्य आम करने को चेस्टा करग्रिकलचर जेहतु प्रति प्लट व्वज करा पड़े हूं तो 5-7 10 दिन लगे बट सब गुड़ाक प्राय शेष प्रस्तुत समय होती आशा कर समस्त जहाँ प्रक्रिया अच्छे आम जिते जल्दी संभव संपन्न।
0: जाजपुर जिलार बरी ब्लक कलामाटिया गुलिकाण्डर 84 स्मृतिचारण सभा अनुषित हो 1942 मसीहा अगस्ट 26 तारीख में भारत छाड़ आंदोलन समय ब्रिटिश पुलिस गुड़े 4 स्वाधीनता संग्रामी शहीद होते श्रीरामपुर साउंटी मल्लिक, कृष्णनगर सानंद स्वाई और हाड़ीबंधु पंडा एवं हाटसाईर मायाधर भूं। शहीद मान स्मृति में शहीद स्तंभ निर्माण कर प्रतिवर्ष रक्षाबंधन अवसर में श्रद्धांजलि ज्ञापन कराए। चलित वर्ष शहीद स्मारकी चैरिटेबल ट्रस्ट और ओडिशा सरकारंकर संस्कृति विभाग पक्षरु स्मृतिचारण सभा आयोजित होइथिला।
3: जिला हालचाले सुनिले जाजपुर जिला संपर्क रे आपण माने कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ठारे भारत एवं थाईलैंड मध्येर अनुष्ठित T20 महिला एशिया कप क्रिकेट मैच रो धारा विवरणी रिले करी प्रचार करुछु आकाशवाणी दिल्ली रो।
4: आकाशवाणी भवानीपाटणा समरति 17:30 श्रोताबंधु प्रचार करुछु चासी भाई ओ भणी मानको पई कार्यक्रम चासपास।

0: गुलापी नानी, गुलापी नानी।
1: ओरे गुरुवारु भे।
0: नानी जुहार।
1: जुहार जुहार। आरु बने अच्छु के?
0: बने बने तो अच्छे बोल लो। आरु गागर मुर भी बने अच्छे। आरु मुर धान रुपा भी सरी कला बोल चे।
1: होए रे भे। धान धुना रुपी थिलू बोल तो। खूब पेन मार ला के। से धान मने बोली गला पर हेला के।
0: होई।
1: आर खोने खोने खोंजलू आमर घरे।
0: होई बहाल खेत तो हिंती हवा बोल।
1: होई हेटा हेटा रुपी थिलू की नी। आर खूब पेन मारी देला। जेंता खणे होइरण हेबाके पड़ला
0: होई जे नानी ई धान तो रुपा रुपी सरला बोल ई कोपा भी तो पुर मने दिसारली ना मुई
1: हां आमे भी दिसालनु ना रे भे आर अमर जित की बाकी चासी भाई बहन मने भी से मन करबी चली थीबा बोल तो पुट देबा सरी थीबा
0: होई इटा तो आमे चास

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर खेल के मैदान का हर अपडेट आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी एशिया कप के आगाज की, जहां T20 के इस मुकाबले में भारत और थाईलैंड इस समय दुबई में आमने सामने है। महिला क्रिकेट में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला इस समय जर्मनी और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। इससे पहले कल अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को हराकर महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। मिजोरम के फुटबॉल खिलाड़ी लालियाना ज्वाला चांगते वर्ष 2026 के बन गए हैं सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान और भारत के बीच खेल संबंधों की प्रगति को सराहा है और फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 88वां संस्करण आज पूरे देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ बनाया गया।

0: और आज आसानी से डोमिनेट करके जीत दर्ज करना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत भारत को मिल गई है, 8 ओवर में 84 रन बन गए और सिर्फ एक विकेट, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुई है स्मृति मंधाना। शेफाली वर्मा ने बहुत ही शानदार शुरुआत दिलाई है, 22 गेंदों पर 43 रन बना दिए हैं उन्होंने, 6 चौके और 2 छक्के उनकी इस पारी में शामिल हैं। और प्रतिका रावल, जिन्होंने अभी तक कोई भी T20 मुकाबला नहीं खेला था, हालांकि वनडे में वो शानदार प्रदर्शन करती आ रही थी, आज उन्होंने अपना T20 डेब्यू एक बहुत ही अहम मौके पर किया है।
1: जी बिल्कुल, एक बहुत अहम मौका और एक बहुत अच्छा अवसर भी कि आपके पास पाकिस्तान से भारत को मुकाबला खेलना है, उसके पहले एक मौका होगा कि हांगकांग और थाईलैंड के सामने एक सदी हुई और एक मंजी हुई शुरुआत हासिल की जा सके। लेकिन अगर भारतीय टीम के पूरे सफ़र पर नज़र डाली जाए, भारत अभी दुबई में है जहां पर टीम एशिया कप खेलेगी, इसके एक सप्ताह के भीतर टीम एशियन गेम्स के लिए जापान जाएगी, बिल्कुल अलग परिस्थितियाँ होंगी और 3 से 4 महीने में यह टीम ICC द्वारा आयोजित पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेगी। एक बहुत ही टफ शेड्यूल है, लेकिन पूरे स्लॉट को अगर देखा जाए भारतीय टीम कितनी तैयार है।
0: शक्ति, वुमेन्स एशिया कप का जो फाइनल है वो 13 सितंबर को खेला जाना है। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो एशियन गेम्स से पहले उनके पास बिल्कुल समय नहीं बचेगा, क्योंकि 17 सितंबर को उनका अपना पहला मुकाबला जापान से खेलना होगा। इसके बाद वो क्वालिफाई, अगर मुकाबला जीतते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए, और वहां उसके बाद सिर्फ एक ही मुकाबला बचता है जो कि है फाइनल। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे तो वहां काफी चैलेंजिंग कंडीशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि पहली बार हो रहा है और 50 ओवर फॉर्मेट में होगा, तो काफी अलग परिस्थितियां जो है भारतीय टीम के सामने रहेंगी। टफ शेड्यूल है, पर जैसा कि 2025 से हम देख ही रहे हैं, टीम ने जब से जीत दर्ज करी है तब से काफी मनोबल उनका ऊपर है।
1: जी बिल्कुल, आपने 2025 का जिक्र किया जहां भारतीय महिला टीम ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में पहली बार विश्व कप का खिताब उठाया था, और उसके बाद हालांकि T20 में वो विश्व कप के फाइनल में ना पहुंचने की कसक शायद इस एशिया कप के खिताब के साथ मिटती हुई नजर आएगी। और अब कार्यक्रम में बात की जाए हॉकी विश्व कप की, जहां बेल्जियम में इस समय पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। जर्मनी की टीम 2023 में जीती थी, अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पे उतर चुकी है, वहीं स्पेन अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश में है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा करके कह सकते हैं कि कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले कल महिला हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां अर्जेंटीना ने 9 बार की चैंपियन नीदरलैंड्स को शूटआउट में हराकर महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है।
2: एम्स्टन फेन के वेगनर स्टेडियम में अर्जेंटीना ने सह मेजबान नीदरलैंड का लगातार चौथा महिला विश्व कप जीतने का सपना तोड़ते हुए शनिवार को पेनल्टी शूटआउट में उसे 3-1 से हराकर अपना तीसरा खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही अर्जेंटीना ने पिछले विश्व कप फाइनल में मिली 1-3 हार का बदला भी पूरा कर लिया है। पिछली बार विश्व कप में अर्जेंटीना को नीदरलैंड ने 3-1 से ही हराया था। नीदरलैंड के लिए पहला गोल 30वें मिनट में दुनिया की नंबर एक ड्रैग फिल्कर माने जाने वाली येबी यानसेन ने किया। मैच के अंतिम क्वार्टर में अर्जेंटीना की कप्तान मारिया ग्रेनाटो ने 54वें मिनट में बराबरी का गोल दागकर मैच को पेनल्टी शूटआउट में खींच दिया, जहां अर्जेंटीना के लिए विक्टोरिया ग्रेनाटो, ब्रिसा ब्रिगेसेर और सोफिया कायरो ने गोल दागे, जबकि डियाज जो का गोल अमान्य करार कर दिया गया। वहीं नीदरलैंड के लिए वीन मारी ने गोल किया, जबकि पीएन सेंडर्स, फेलिस एल्बर्स और मोइस फ्रीके मौके को गोल में तब्दील नहीं कर सके और नीदरलैंड्स का 10वीं बार चैंपियन बनने का सपना फिर कुछ वर्षों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। इस निर्णायक मुकाबले में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाली कप्तान ग्रेनाटो ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: I think it's really important for us. We fight together all the time. We are really happy for finally win this is final. We do a really good World Cup, so I'm really happy for the team.
2: वहीं विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में मेजबान बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से पराजित किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: हम जब भी लड़ते हैं साथ लड़ते हैं, इसलिए हमारे लिए जीत के मायने बड़े होते हैं। कप्तान ग्रेनाटो के ये शब्द बताते हैं कि उनके लिए जीत कितना महत्व रखती है। अब हॉकी से रुख करते हैं फुटबॉल के मैदान का, जहां म्यूजरम के फुटबॉल खिलाड़ी लालियाना जुआना चांगते को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर चुना गया है। 29 वर्षीय चांगते हाल ही में मुंबई फुटबॉल क्लब से मोहन बगान में शामिल हुए हैं। उन्होंने कल रात भारतीय फुटबॉल के दिग्गज बाइचिंग भूटिया से ये सम्मान प्राप्त किया। फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ये पुरस्कार साथ ही खिलाड़ियों के वोटों के आधार पर तय किया जाता है, तो कह सकते हैं कि एक बेहद रोचक पुरस्कार। अक्सर हम देखते हैं जहाँ पे दर्शक तय करते हैं, जहाँ पे जूरी

0: तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं दुबई में खेले जा रहे भारत और थाईलैंड के बीच महिला टी20 एशिया कप के मुकाबले से, जहां आज हरमनप्रीत एंड कंपनी अपने अभियान का शानदार आगाज करने को बेताब है। हांगकांग ने टॉस जीत करके इस समय थाईलैंड ने टॉस जीत करके गेंदबाजी का फैसला किया है और भारत ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 8 ओवर में 1 विकेट खोकर 83 रन बना लिए हैं। भारत को इस बार एशिया कप में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में स्थान दिया गया है और इस पूरे टूर्नामेंट पे बारीकी से नजर रख रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विशेष, आज का मुकाबला रहा काफी आसान नजर आती है सेमीफाइनल तक की।
1: बिल्कुल शक्ति, आज भारत ने अपने अभियान की शुरुआत करी है थाईलैंड के सामने।

0: व्यक्ति है वो तय करती है, लेकिन यहाँ पे आपके साथी खिलाड़ी तय करते हैं कि कौन इस खिलाड़ी को, कौन इस पुरस्कार को प्राप्त करेगा। चांग तेन इससे पहले 2023-24 के सीज़न में भी ये सम्मान अपने नाम किया था। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने चांग तेन को बधाई दी है। इस बीच पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने भारत और ब्राज़ील के बीच होने वाले मैत्री मुकाबले से पहले भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
1: I am really happy and a little bit jealous that the boys are going to play against Brazil, Uruguay and Panama. In my 26 years of professional play and 20 years of national team, I never got a chance. So the feeling that I'm getting is I'm a little bit jealous. I hope we can get the boys as fit as possible. I'm pretty sure all the boys are going to fight so much to be in this game. I just hope that they can get the best out of this game. It's a great experience.
0: तो जब भी कभी भारतीय फुटबॉल की बात आती है, हमने भाईचंद भूटिया का जिक्र किया जिन्होंने ये शानदार पुरस्कार दिया था सुनील छेत्री, और लगातार भारत धीरे धीरे ही सही, जिसको हम बेबी स्टेप्स कहते हैं, उस रूप में बढ़ रहा है कुछ बड़ी उपलब्धियों की तरफ। लक्ष्य कहीं ना कहीं हर भारतीय का सपना है कि भारत की टीम, भारत का तिरंगा कभी फीफा के मंच पर भी नजर आए, और शायद ऐसे खिलाड़ी कहीं ना कहीं भविष्य में उस सपने की राह को और मजबूत करते नजर आएंगे। लेकिन उसके पहले ये फ्रेंडली मैच जो भारत और ब्राज़ील के बीच खेला जाना है, किस तरह का भारत में क्रेज़ होता है फुटबॉल को लेकर, हमने फीफा विश्व कप के दौरान देखा था, उसी की राह पर एक ये मुकाबला शायद, जिसका तमाम खेल प्रेमियों को, फुटबॉल प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान यात्रा पर हैं, इसके बाद अब वो किर्गिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आज उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अहम समझौते किए। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने खेल के क्षेत्र पर भी व्यापक चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई है।
2: आने वाले समय में कुराश और कबड्डी जैसे ट्रेडिशनल गेम्स की हमारी स्पोर्ट्स साझेदारी को नई ऊर्जा देंगे। आज की चर्चा ने हमारे संबंधों के भविष्य को एक स्पष्ट दिशा तय की है। अ स्ट्रॉन्गर इंडिया उज्बेकिस्तान पार्टनरशिप विल बी अ पावरफुल फोर्स फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन सेंट्रल एशिया।
0: खेल वो मंच जो एक तरफ स्पर्धा में आपको सबसे आगे रहना सिखाते हैं, दूसरी तरफ खेल आपको जोड़ते हैं दूसरे देशों से, तोड़ते हैं सीमाओं को और एक साथ लाते हैं कई दूसरे देशों को। श्री मोदी ने अगले महीने समरकंद में होने वाले चेस ओलंपियाड के लिए उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदरोव और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को शुभकामनाएं दी हैं।
2: स्पोर्ट्स भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है। पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सिंदारोव ने वर्ल्ड कप जीता। अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय चेस चैंपियन गुकेश के साथ होने वाला है। एक बिसात पर जब ये दो युवा सितारे आमने सामने होंगे तो जाहिर है इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर होगी। अगले महीने समरकंद में होने जा रहे चेस ओलंपियाड में इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: तो भारत के डी गुकेश जहां पर चुनौती रखेंगे भारतीय, और सामने होंगे उनके सिंदरोव, और एक ऐसा मुकाबला जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि पूरी दुनिया की नज़र इस मुकाबले पर होगी, और देखना होगा कि कौन इस गेम का नया चैंपियन बनके उभरता है। भारत जिस तरह से चेस की एक नई नर्सरी के रूप में उभरा है, और जो एक पूरी लय विश्वनाथन आनंद से शुरू हुई थी, वो लगातार आज प्रज्ञानानंदा जैसे युवा खिलाड़ियों तक, दिव्या देशमुख तक ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आती है। और आज संडे का दिन है तो फिर फिटनेस की डोज भी ली जाए। संडे ऑन साइकिल का 88वां संस्करण आज देश भर में आयोजित किया गया। इस बीच दिल्ली में आयोजन में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाई और फिटनेस का संदेश दिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के सहयोग से राष्ट्रीय खेल दिवस का विशेष संस्करण देखने को मिला। संवाददाताओं से बातचीत में खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है।
3: आज देश में 25,000 से अधिक स्थानों पर 88 संडे ऑन साइकिल एडिशन का प्रारंभ हुआ। देश में साइकिलिंग एक क्रेज बन रहा है। संडे ऑन साइकिलिंग धीरे धीरे धीरे जनता में पैशन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग ट्रैफिक का भी समाधान है। तो चलो हम सब युवा साथियों दिन में 1 घंटे मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन से हटके खेल के मैदान में जाएं, साइकिलिंग करें, खेलें और अपने स्वयं को फिट रखें।
0: तो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, एक बेहतर सफर की बुनियाद भी है ये साइकिल, जो आपको संदेश देती है पॉल्यूशन से कुछ दूर हटने का, थोड़ा सा सहयोग अर्थव्यवस्था में करने का

0: और लाइफ को फिटनेस के ट्रैक पर लाने का, एक अच्छा जीवन जीने का। डॉक्टर मांडविया ने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा साइकिल चलाने और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। तो वो समय जो कुछ फ़ोन स्क्रीन से हटाया जाए, थोड़ी साइकिल चलाई जाए, थोड़ी कसरत की जाए, थोड़ा योग किया जाए। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच और पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा कि फिट इंडिया पहल देश को अधिक स्वस्थ, मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर करेगी।
1: ये जो सरकार के द्वारा फिट इंडिया का जो इवेंट है, ये एक इतना बेहतरीन इनिशिएटिव है, क्योंकि मेरा मानना है जितना फिट इंडिया रहेगी उतना ही स्ट्रॉन्गर इंडिया रहेगा और उतना ही सेल्फ रिलायंट इंडिया रहेगा। तो मेरा मानना है इसको सिर्फ एक इवेंट के नजरिए से नहीं, एक मूवमेंट के नजरिए से हमें देखना चाहिए। और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है यूथ की, जितने लोग इस इवेंट से या फिर इस इनिशिएटिव से जुड़े हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको एक मूवमेंट बनाएं जिससे कि हमारा यूथ और जितने लोग हैं कि वो फिट रह सके, अ फिटर नेशन और स्ट्रॉन्गर नेशन।
0: तो गौतम गंभीर के शब्द थे, एक फिटर नेशन ही स्ट्रॉन्गर नेशन है। जो देश जितना स्वस्थ है उतनी मजबूत उसका भविष्य है। और इसी संदेश के साथ फिटनेस का ये कार्यक्रम, फिटनेस का ये मंच जो अब धीरे धीरे एक अभियान में, एक आंदोलन में बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां संडे की सुबह लोग अपनी नींद को पॉज दे करके, एक ब्रेक दे करके साइकिलों पे निकलते हैं और दुनिया को देते हैं फिटनेस का संदेश। और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर नज़र डाल लेते हैं दुबई में खेले जा रहे भारत और थाईलैंड के बीच महिला एशिया कप के T20 मुकाबले पर, जहां भारत ने इस समय 10 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और 2 विकेट खोकर 101 रन बनाए हैं। विशेष किस राह पे जाता हुआ मैच नज़र आ रहा है और क्या क्या अपडेट हैं?
2: भारतीय टीम अभी पूरी तरह से कंट्रोल में नजर आ रही है, हालांकि अभी 2 विकेट गिर गए हैं स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल के रूप में, लेकिन शफाली वर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रही हैं 59 रन पर, और वहीं हरमनप्रीत कौर भी 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर क्रीज पर डटी हुई हैं। इसके बाद भारती फूलमाली, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा जैसे बल्लेबाजों को आना है और टीम को एक मजबूत स्थिति प्रदान करनी है। तो ये मुकाबला जो है भारत की झोली में आता हुआ नजर आ रहा है।
0: जी बिल्कुल, तो 10 ओवर के बाद ही अगर टीम का प्रदर्शन या अनुमान लगाने लगे कि मैच किस दिशा में जा रहा है, आपने कहा कि अभी भारतीय फूलमाली हैं, ऋचा घोष हैं, दीप्ति शर्मा हैं, तो वाजिब है कि एक गहराई इस टीम के बल्लेबाजी क्रम में नजर आती है। और गेंदबाजी का तो कोई तोड़ इस समय है नहीं, क्रांति गौड़ और श्रीचरणी जिस प्रकार की फॉर्म में चल रही है, देखना होगा भारत की नज़र भी होगी कि थोड़ा और मार्जिन से मुकाबले में बढ़त बनाई जाए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें हमारे स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में

0: संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में UPI के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और public@AIRNewsAlerts को फॉलो करें।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
2: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया।

0: है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। 2 क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi warns of perils of drug abuse in Mann Ki Baat program, celebrates women's economic empowerment, girls entering space industry and agricultural innovation. Nepal issues fresh flood alert along Bhote Koshi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for coveted World Cup title in Belgium. And now the news in detail. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In its remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would

0: a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं. इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है. आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है. हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है. अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है. इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे.
0: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president following the talks, Prime Minister Modi said, maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है. आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे. हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है. इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा.
0: Mr. Modi said India and Uzbekistan will jointly organize a business summit involving business leaders from both the countries.
1: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो. यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे. आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं. हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोडमैप बनाना चाहिए.
0: Prime Minister Modi said the two countries will also set up cooperation in the field of sports.
1: स्पोर्ट्स भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है. पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सिंदारोव ने वर्ल्ड कप जीता. अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय चेस चैंपियन गुकेश के साथ होने वाला है. एक बिसात पर जब ये दो युवा सितारे आमने सामने होंगे तो जाहिर है इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर होगी.
0: Mr. Modi announced 100 Lal Bahadur Shastri scholarships for Uzbek students to promote the Hindi language in the Central Asian country, along with the establishment of a Sanskrit chair at Tashkent State University of Oriental Studies. India has pledged $1 million for afforestation in the Aral Sea region. The two sides also agreed on an arrangement allowing Indian UPI apps to scan Uzbekistan's national UZ QR codes for merchant payments. A letter of intent was also signed for the restoration and conservation of the Buddhist sites of Fayaz Tepa and Kara Tepa in Uzbekistan. On the occasion, Prime Minister Modi was also conferred with Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oliy Darajali Dostlik, by President Shavkat Mirziyoyev. Prime Minister Modi dedicated the accolade to the 1.4 billion people of India and highlighted that it is a symbol of the enduring friendship between the two civilizations. Several union ministers, including Defence Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Finance Minister Nirmala Sitharaman, have congratulated Prime Minister Modi on being honoured with Uzbekistan's Supreme State Award. Lok Sabha Speaker Om Birla also congratulated Mr. Modi on receiving the honour. Mr. Modi reached Tashkent yesterday on a 2-day visit to Uzbekistan. After concluding his 2-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic a short while ago to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in capital Bishkek. During his 2-day visit to the Central Asian country, Prime Minister will hold bilateral meetings with leaders of SCO member countries on the sidelines of the summit tomorrow. Mr. Modi will attend the SCO summit on Tuesday. Our correspondent covering Prime Minister Modi's Kyrgyz Republic visit has filed this report.
2: The summit marks the 25th anniversary of the Shanghai Cooperation Organization. India has been a full member of SCO since 2017. Prime Minister will address the summit where he will highlight India's priorities of security, connectivity and opportunity at the forum. During his visit, Prime Minister will also attend the opening ceremony of the 6th World Nomad Games, a celebration of the rich cultural heritage of Central Asia. Vikalp Shukla, Akashvani,

कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी हमारे बीच रहती हैं। वे इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमसे बातें करती हैं, कभी कविता के जरिए, कभी खेल के मैदानों की यादों के जरिए और कभी अपने जीवन के अनुभवों के जरिए। इन आवाजों में एक पूरा इतिहास सांस लेता है और जब बरसों बाद ये आवाजें फिर सुनाई देती हैं तो लगता है जैसे बीता हुआ कल आज से कुछ कह रहा हो। शायद इसलिए आवाज हमारी पहचान होती है।

0: बातें सुनेंगे, उनके जीवन को समझेंगे और जानेंगे कि इतने वर्षों के बाद भी उनकी आवाजें हमें क्यों प्रेरित करती हैं। आइए समय की इस दूरी को कुछ देर के लिए मिटाते हैं और सुनते हैं उनकी आवाज। इन तीनों की दुनिया अलग थी। एक शायर थे, एक महान खिलाड़ी और एक प्रसिद्ध लेखिका। लेकिन इन तीनों में एक बात समान थी, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई और अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ी जिससे आने वाली पीढ़ियां आज भी प्रेरणा लेती हैं। सितारों से उलझता जा रहा हूं, शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूं, तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूं, जहां को भी समझता जा रहा हूं। अब सुनते हैं एक ऐसी आवाज जिसने उर्दू शायरी को अलग पहचान दी।
1: शायरी तो हसास तरीके तो कोई बात कह देने का नाम नहीं, शायरी महज इजहार नहीं, शायरी रूहानी लिहाज से एक तामीर, तकरीब की फोटोग्राफी।
0: 8 अगस्त 1896 को गोरखपुर में जन्मे फिराक गोरखपुरी का नाम था रघुपति सहाय। वे उर्दू के मशहूर शायर और लेखक थे। उनकी शायरी में प्रेम, प्रकृति, जीवन और इंसानी रिश्तों की गहरी समझ दिखाई देती है।
2: किसी का कौन हुआ यूं तो उम्र भर, फिर भी ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब, मगर फिर हजार बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेजी रह गुजर के।
0: फिराक की खासियत ये थी कि उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और संस्कृति की सहज झलक मिलती है। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए इंसान और इंसान के बीच के रिश्तों को समझने की कोशिश की। उनकी भाषा और सोच में भारत की उस साझा संस्कृति की झलक मिलती है जहां अलग अलग भाषाएं और परंपराएं होते हुए भी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं।
3: उन्हीं के दिल हैं अमीने रमूज आजादी, जो जानते हैं असीरी है एक फन से
0: फिराक की आवाज में भी वही अपनापन महसूस होता है जो उनकी शायरी में दिखाई देता है। भारत की खूबसूरती भी यही है, यहाँ भाषाएं अलग हैं, बोलने का अंदाज अलग है, लेकिन भावनाएं एक जैसी हैं।
4: मैं ये नगमे गाते गाते कितनी दूर निकल आया, कायनात की हर सरहद नजरों से छुपती जाती है। अलविदा ऐ जन्म साथियों, अलफिराक ऐ हम असरो, एक अनसुनी पुकार दूर से मुझको कहीं बुलाती है। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज बदलो, नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है।
0: शब्द अलग हो सकते हैं, लहजे अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात दिल से निकलती है तो वो हर दिल तक पहुंचती है। शायद यही फिराक की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने भाषा की सीमाओं के पार जाकर इंसान को इंसान से जोड़ दिया।

फिराक गोरखपुरी, मेजर ध्यानचंद और अमृता प्रीतम, आज ये तीनों महान हस्तियां हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाजें हमारे साथ हैं। आकाशवाणी के अभिलेखों में सुरक्षित इन आवाजों के माध्यम से आज हम उन्हें फिर याद करेंगे, उनकी

बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। मेरी नजरें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमान है, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं।

0: India score. The final result was India 8, Germany 1.
1: भारतीय हॉकी की कहानी उस दौर की कहानी है जब भारत की प्रतिभा और खेल कौशल ने दुनिया को अपना मुरीद बना लिया था। और इस गौरवशाली यात्रा के सबसे उज्जवल अध्यायों में एक नाम था मेजर ध्यानचंद। उनके लिए हॉकी महज एक साधना थी। गेंद पर अद्भुत नियंत्रण, खेल की गहरी समझ और गोल करने की असाधारण कला ने उन्हें दुनिया के महानतम खिलाड़ियों की पंक्ति में ला खड़ा किया। लेकिन ध्यानचंद की असली महानता उस खेल संस्कृति और विरासत में थी जो वे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए। 29 अगस्त उनकी जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन उन असंख्य खिलाड़ियों के परिश्रम, अनुशासन और समर्पण को सम्मान देने का दिन भी है जो अपने खेल के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाते हैं। ध्यानचंद से जुड़ी अनगिनत कहानियां आज भी हमारे बीच जीवित है। तस्वीरों में दर्ज उनका व्यक्तित्व, मैदान से जुड़े किस्से और उनकी उपलब्धियां हमें उस स्वर्णिम दौर की याद दिलाते हैं। लेकिन जब इतिहास के पन्नों से निकलकर उनकी आवाज हमारे सामने आती है तो वो दौर और भी जीवंत हो उठता है। आइए सुनते हैं मेजर ध्यानचंद की अपनी आवाज आकाशवाणी के अभिलेखों से।
2: जो फॉरेन कंट्री जो हॉकी सीखी है इसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान के जरिए सीखी है। मैंने देखा है वहाँ कि हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविजन वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों के जरा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फ़ोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज़ लड़कों को सिखलाने के लिए खींच लेते थे और वो फोटोज़ स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा, जब मैं 63 में बर्लिन में गया फिर ये देखा, बच्चों को वो स्क्रीन के ऊपर उसको उनको शो करते थे और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है और ये सिर इधर है, बाल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है, फलान। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं बजाय एक मारने के, अब ड्रिबलिंग भी शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो इसमें शक नहीं है कि सीखा हम लोगों से है और इसमें हमारे लोगों की, हमारे हिंदुस्तान की अभी तक वो कंट्री तारीफ करती है कि हाँ हिंदुस्तान जो खेलती है हॉकी, वो हिंदुस्तान के सिवा और कोई नहीं खेल सकता।
3: बादलों के महल में मेरा सूरज सोया हुआ है और उस महल का कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, और सदियों के हाथों ने जो पगडंडी बनाई है वो मेरे चिंतन के पैरों के लिए बहुत संकरी है। मैं अपने सूरज के पास कैसे पहुँचूँ जो बादलों के महल में सोया हुआ है।
1: अभी आपने सुनी अमृता प्रीतम की आवाज़। उनकी बातों में एक सादगी है और इसी सादगी में उनके अनुभवों की गहराई भी दिखती है। अमृता प्रीतम ने ऐसे समय में लिखा जब समाज में महिलाओं के लिए अपनी बात खुलकर कहना आसान नहीं था। उन्होंने प्रेम के बारे में लिखा, उन्होंने बंटवारे का दर्द लिखा, उन्होंने औरत के मन की बात लिखी और सबसे बढ़कर उन्होंने अपने तरीके से जीने और लिखने की हिम्मत दिखाई। 31 अगस्त 1919 को जन्मी अमृता प्रीतम भारतीय साहित्य की ऐसी आवाज थी जिन्होंने प्रेम, रिश्तों, अकेलेपन और अपने समय की पीड़ा को बहुत सहज शब्दों में लिखा। उनकी लेखनी में एक खास बात थी, वे दिल की बात कहने से कभी पीछे नहीं हटी।
3: हमारे देश के 7 पवित्र स्थान 7 पुरियां कहे जाते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, काशी, अवंती और द्वारापुरी। इनमें से द्वारापुरी सागर के किनारे थी जो कृष्ण के देह त्यागने के 7वें

0: दिन सागर में आलोप हो गई थी। बाद में वो द्वारका के नाम से दूसरे स्थान पर बस गई, पर अपने मूल स्थान से वो लोप हो चुकी है। मैं सोचती हूँ कि सागर में लोप हो चुकी द्वारावती हर इंसान के मैं का वो टुकड़ा है जिसकी तलाश हर इंसान के मैं को करनी होती है और उसका इतिहास खोजना होता है। इसी मैं की तलाश में मैंने जाना कि मेरे में और एक ब्राह्मण में क्या फर्क है। यही कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे में और एक क्षत्रिय में भी यही फर्क है कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। मेरे में और एक वैश्य में भी यही फर्क है कि मैं वैश्य नहीं हूँ। इसी तरह मेरे में और एक शूद्र में भी यही फर्क है कि मैं शूद्र नहीं हूँ। और जाना कि मेरे में और एक हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई में भी यही फर्क है कि मैं हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई नहीं हूँ। मेरे मैं की एक पवित्र पुरी द्वारावती फिर कौन से पानी में लोप हो गई, यही खोजते हुए मैंने अपनी द्वारावती का भेद पा लिया कि मैं चरक जाति की हूँ। हमारे प्राचीन काल में चरक उसे कहा जाता था जिसका मुतालिया, जिसका अध्ययन जिंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता था। वो तमाम जिंदगी इलम को, ज्ञान को ग्रहण करता था और तमाम जिंदगी उस इलम को, ज्ञान को बांटता रहता था। मैंने इलम के लिए अपनी प्यास को समझ लिया तो अपनी जाति पहचान ली और जान लिया कि दो हाथों से जो अर्जित करना है वही हजार हाथों से बांट देना है।
1: आज इतने वर्षों बाद भी अमृता प्रीतम की बातें हमें अपनी सी लगती हैं, शायद इसलिए कि उन्होंने अपने समय की उन भावनाओं को शब्द दिए जिन्हें महसूस तो बहुत लोग करते थे लेकिन कह नहीं पाते थे। प्रेम हो, बिछड़ने का दर्द हो, विभाजन की पीड़ा हो या एक स्त्री के मन और अपनी पहचान की बात, अमृता प्रीतम ने हर विषय को बहुत सच्चाई और बेबाकी से लिखा।
0: अर्ध नारीश्वर का फलसफा खो गया तो दास्ता पैदा हुई, शिव शक्ति जैसा चिंतन खो गया तो जड़ता पैदा हुई, धर्म खो गया तो प्रतिकर्म में से मजहब पैदा हुआ, आत्मा खो गई तो शरीर एक वस्तु बन गया, मजहब और सियासत बहुत बड़े माध्यम बन गए जिनके हाथों वस्तु बन चुके इंसान का व्यापार होता है।
1: उन्होंने अपने जीवन में भी अपनी राह खुद चुनी और अपनी पहचान बनाई। यही वजह है कि उनका साहित्य केवल एक दौर की कहानी नहीं रह गया, उनकी रचनाएं कई भाषाओं में पढ़ी और अनुदित हुई। अलग अलग प्रदेशों के पाठकों ने उनमें अपने जीवन और अपनी भावनाओं की झलक देखी। शायद यही किसी लेखक की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी बात उनके दिल से निकलती है लेकिन पहुंचती है हर दिल तक। अमृता प्रीतम के साथ तो आकाशवाणी का रिश्ता और भी खास है। अमृता प्रीतम ने दिल्ली में आकाशवाणी की पंजाबी सेवा में काम किया था और 1961 तक जुड़ी रहीं, यानी जिस आकाशवाणी के अभिलेख आज उनकी आवाज को हमारे लिए संभाल कर रखे हुए हैं, कभी उसी आकाशवाणी का हिस्सा बनकर अमृता प्रीतम ने भी श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाई थी।
0: मेरी तमाम दुनिया सपनों की दुनिया है, इसे तकसीम करूं तो एक हिस्सा जागती आंखों के सपनों से भरा हुआ है और दूसरा सोई हुई आंखों के सपनों से। जिंदगी का यथार्थ क्या है और क्या हो सकता था, इसी यात्रा को मैं नाम देती हूँ मैं से लेकर मैं तक की यात्रा, यानी अपने ही छोटे मैं से लेकर अपने ही बड़े मैं तक की यात्रा। यूनान के लेखक निकोस काजांजाकिस ने मेरे इस एहसास को बड़े खूबसूरत अल्फाज दिए थे, क्रिएट एन आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ योरसेल्फ एंड ट्राई टू रिजेंबल इट। मैंने काजांजाकिस के इन अल्फाज को गुरु मंत्र की तरह धारण किया है और जो सोचती रही, लिखती रही, वो एक यात्रा है अपने छोटे मैं से लेकर अपने बड़े मैं तक पहुंचने की। कह सकती हूँ

कि ये एक अक्षर की यात्रा है। छोटे मैं से लेकर बड़े मैं तक की यात्रा, गुलामी से स्वतंत्रता तक की यात्रा, नफरत से मोहब्बत तक की यात्रा, जड़ से चेतन तक की यात्रा, अक्षर से अर्थ तक की यात्रा, और महदूद से लामहदूद तक की यात्रा, यानी सीमित से असीम होने तक की यात्रा।

समय बीत जाता है, लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें रह जाती हैं। और जब वे आवाज़ें फिर सुनाई देती हैं तो लगता है जैसे बीता हुआ समय कुछ पल के लिए लौट आया हो। एक ने अपने शब्दों से जिंदगी को आवाज दी, एक ने अपने खेल से देश का गौरव बढ़ाया, और एक ने अपनी शायरी से दिलों में जगह बनाई। रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल एक, अपने हुनर को पहचानना, उसे साधना और ऐसा काम करना जो वक्त बीत जाने के बाद भी लोगों को प्रेरित करता रहे। अमृता प्रीतम की लेखनी से हम अपने मन की बात कहने की हिम्मत सीखते हैं। मेजर ध्यानचंद से मेहनत, अनुशासन और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा सीखते हैं, और फिराक गोरखपुरी से भाषा और संस्कृति की सीमाओं से ऊपर उठकर इंसान को समझना सीखते हैं। समय बदलता रहेगा, पीढ़ियां बदलती रहेंगी, लेकिन इन महान व्यक्तित्वों से मिलने वाली सीख कभी पुरानी नहीं होगी। नई पीढ़ी इनके जीवन

0: सीखती रहेगी और अपने सपनों को पूरा करने का साहस पाती रहेगी। ये तीनों आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी यादें हैं, इनके शब्द हैं, इनके अनुभव हैं और सबसे बढ़कर इनकी आवाजें हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मगर आवाज वो ठहर जाती है। यही तो है अनुगूंज, वक्त के साथ तस्वीरें धुंधली पड़ जाती हैं, नाम यादों में कहीं पीछे छूट जाते हैं, लेकिन आवाज अपने होने की एक निशानी छोड़ जाती है।
1: अभी आप आकाशवाणी अभिलेखागार द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे। वाचन आशुतोष कुमार, शीर्षक गीत राजेश राज और गायक जितेंद्र सिंह, शोध आलेख एवं निर्देशन मोनिका गुलाटी।

0: स्तरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में लीजिए प्रस्तुत है जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन वादन। जी राघवेंद्र प्रसाद कर्नाटक वायलिन वादक हैं और ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। दिल्ली में जन्मे जी राघवेंद्र प्रसाद ने कर्नाटक वायलिन वादन की बारीकियां अपने गुरु कलैमा मणि श्री वी एस के चक्रपाणी जी के मार्गदर्शन में सीखी हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से कर्नाटक संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है, जहां आप रजत पदक विजेता रहे हैं। राघवेंद्र प्रसाद एकल वादन के साथ साथ एक सिद्धहस्त संगतकार के रूप में भी संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए आपको युवा कलाकार छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आपको सन 2010 में CCRT छात्रवृत्ति, 2019 में युवा पुरस्कार और युवा उभरते कलाकार का खिताब, 2022 में नाद लय शिखामणि तथा 2023 में संस्कृति मंत्रालय एवं आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संयुक्त रूप से गंधर्व विज्ञ सम्मान से नवाजा गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला का परचम लहराते हुए आपने रूस में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भाग लिया और स्विट्जरलैंड के रीटबर्ग संग्रहालय में प्रस्तुतियां दी। देश के प्रतिष्ठित मंचों जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जालंधर का प्रसिद्ध हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, राष्ट्रपति भवन, TTD, नाद नीराजनम, वाराणसी का श्री संकट मोचन मंदिर स्पिकमैके तथा तिरुवैयारू में त्यागराज आराधना महोत्सव में भी इनकी प्रस्तुतियां सराहनीय रही हैं। एक कुशल संगीतकार के रूप में राघवेंद्र ने पद्म भूषण श्री TN शेष गोपालन, मल्लाडी ब्रदर्स, नेवेली श्री संथान गोपालन, श्री OS अरुण, मामलम सिस्टर्स तथा डॉक्टर के वागीश जैसे संगीत जगत के शीर्ष दिग्गजों के साथ सफलतापूर्वक वायलिन संगत की है। आइए सुनते हैं जी राघवेंद्र प्रसाद का कर्नाटक वायलिन वादन। आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री वरुण राजशेखरन संगत कर रहे हैं। जी राघवेंद्र प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मणिरंगू से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभानुजेशा। इसके रचनाकार हैं महाराजा स्वाति तिरुनाल। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। टुनाइट इन रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वायलिन रिसाइटल बाय जी राघवेंद्र प्रसाद। जी राघवेंद्र प्रसाद

0: ते हुए जी राघवेंद्र प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग वराली। रचना के बोल हैं शेषाचल नायकम। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: That was राग मणिरंगू। Continuing his recital, G. Raghavendra Prasad now presents another composition based on Rag Varali. Composition is Shesha Chalanayakam, composed by Muthuswami Dikshitar and is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया गया राग वराली। अपने कार्यक्रम का समापन जी राघवेंद्र प्रसाद राग बिलहरी इसे कर रहे हैं। रचना के बोल हैं श्री चामुंडेश्वरी पालय माम। इसके रचनाकार हैं मैसूर वासुदेवाचार। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: जी राघवेंद्र प्रसाद कंक्लूड्स हिज वायलिन रिसाइटल विद रागम बिलहरी। कंपोजिशन श्री चामुंडेश्वरी पालय माम, कंपोज्ड बाय मैसूर वासुदेवाचार एंड इज सेट टू आदितालम।

0: आज के कार्यक्रम में आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पी होली और घटम पर वरुण राजशेखरन संगत कर रहे थे। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by Yashwant Hampi Holi and on Ghatam by Varun Rajashekharan. With that, we conclude tonight's Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. This program was earlier recorded in the studios of Akashvani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलेक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में

0: समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memoranda of Understanding, MOUs, aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia. Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
3: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को-प्रोडक्शन और को-डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
2: On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oli Edarjali Dostlik, by President Shavkat Mirziyoyev. Prime Minister Modi dedicated the accolade to the 1.4 billion people of India and highlighted that it is a symbol of the enduring friendship between the two civilizations. Mr. Modi reached Tashkent yesterday on a two-day visit to Uzbekistan. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO summit in capital Bishkek. Prime Minister Narendra Modi today shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashvani. In his address, Prime Minister Modi strongly warned against the social perils of drug abuse. He highlighted that Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign for a drug-free youth and a drug-free India is gaining momentum with people joining in large numbers. The Prime Minister also championed women-led economic empowerment through the PM Swanidhi scheme, with nearly 35 lakh females across the country using the scheme to expand their businesses. Defence Minister Rajnath Singh has said India is moving rapidly towards self-reliance in the defence sector and witnessing a major transformation in its defence industrial ecosystem. Mr. Singh was addressing the PM Setu Industry Conclave at Lucknow in Uttar Pradesh today. Nepal has issued fresh alert for flood in Bhote